0: सामूहिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियान 25 नोभेम्बरदेखि 10 डिसेम्बर 2025 प्रविधिको सही प्रयोग गरौं लैंगिक हिंसा अन्त्य गरौं।
1: अनि तयो कागज केमे छिवा अ झिल्काई के पर्सनल नम्बर ब्लक लैबधि
2: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर बे अफिसर आएर ब्लक लै र खरखाई
1: अनि बैंगरी
2: बैंगरी
1: आ
2: चढ चाहिँ तले लगपर्दी
1: सम लगपर्दी न आफै न मोबाइल नम्बर फेर दिया बदेर ब्लक तयाई विषय आफै न ब्याङ्क दे बिनी जानकारी पिन परिम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थोनी दक्या सचेत तल परिम
2: सतर्क तना ठगी तब दक्या जोगी न
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले मध्याह्नको ठीक 12 बज्यो।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज़।

0: बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट हामी सबैको साझा आवाज।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ।
1: रेडियो दीदी बहनी 95.2 मेगाहर्ट्ज हामी सबैको साझा आवाज।

को लाभ दी आप कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जीऊ।